के बात करो, रात को दिन बना के बात करो। मैं कदे की चराग मद्दम है, जरा आंखें उठा के बात करो।